सह प्रथम नाऊ किसन बिसन कब हूं त्याऊ कान सुने पहचान नतन सो लिव लागी मोरी पाग इन सो महाकाल रखवार हमारो महालोह मैं कै कर थार अपना जान करो रखवार बाहे गहे की लाज विचार अपना जान मजा प्रत परी है चुन चुन सत्र हमारे मरी है देख तेग जग मैं दऊ चल राख आप मुहे और नंद लै तुम

तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संगारो प्रथम तरह भगवत को ध्याना बहरो करो कविता बिद नाना कृष्ण जथा मात चरित्र उचारो चूक होए कब लेहो सुधारो कबे उबाज दोहरा जो निज प्रभमो सो कहा सो कहे हो जग माहे जो तेह प्रभ को त्याय है अंत स्वर्ग को जाहि दोहरा हार हार जान दुई एक है बिब विचार कश नाहे जल ते उपजित रंग ज्यो जल ही बिखै समाहे दोहरा जब आए प्रभ को भयो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूं कह सुनाए कब बाच दोहरा ठाड़ पयो मैं जोर कार बचन कहा सिर न आए पंथ चल तब जगत मैं

के चरण तास तद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण की और अकबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद बेबाद ग्रंथ सकल पूर्ण की ओ भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाई गहे जाबते तुमरे ताबते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो

कारज सब सवारणा सब नांगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नामे आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए बसिया जिन इच्छा सब पुजाईया

पावड़ी, जिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे ओथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे, भवगिल बिकम सगाहो गुर सबदी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे।

चार को सालां दा पुत है बाबा अजय सिंह सिख पंथ दा छोटी उम्र दा शहीद जी दा नाम साडे कोल उहदे तो बाद भी भाई मनप्रीत सिंह चेते रखो भाई रिशपाल सिंह पीए दा 18 दिना के 18 महीनिया दा पुत 1984 अंदर श्री अकाल तख्त साहब उत्ते जो हमला होया उस वक्त शहादत दा जाम पींदा जमदे बच्चे मामा दीआं गोदियां विच को के शहीद कीते गए। इत्थे बाबा अजय सिंह गुरदास नंगल दी गढ़ी विच सी, पिता दे नाल ही गिरफ्तार कीता गया। पिता धर्म दे राह ते तुरिया ते पुत नाल कदम ना कदम मिला के चलदा होया शहीदी मुकाम तक पहुंचया, शहीदी मुकाम तक, क्योंकि बच्चे जो वेखदे ने उही ओ करदे ने, बच्चे नकल करदे ने, सिखदे ने कि साडा मां प्यो की करदा है। जे पिता माता सवेरे शाम गुरु पातशाह महाराज जी दे चरणा अंदर मन जोड़ गुटका साहब लेके बाणी पढ़दे ने ते छोटे छोटे बच्चे चेते रखो उन्हां दे हाथ चो गुटका साहब फड़ के वो बाणी पढ़न दी कोशिश करदे ने, नकल करदे ने। पर जे मां प्यो सवेरे शाम, क्योंकि बच्चे अज एक उलामा है कि साडे बच्चे मोबाइल फोन फड़े बिना रोटी नहीं खांदे, एक गल कित्थों सिख गए ओ, क्योंकि उन्होंने वेख्या है कि माता रोटियां पका रही है ते सामने मोबाइल रखिया होया उन्हें, जा वीडियो कॉल ते लगी है जा रीला वेखदी है। पिता रोटी खांदा है उहदे भी गाड़ी मोबाइल है। बच्चे ने वेख के सिखिया है के रोटी पकाउन लग्या भी मोबाइल जरूरी है, खान लग्या भी जरूरी है। उन्हें मां प्यो वल्लों वेख के ते उन्हें आख्या भी मैनू भी पहला मोबाइल चाहिए फिर रोटी खानी है। मैं जे अरदास करके प्रशादा छकदा है बाप ते चेते रखो बच्चे नकल करदे भावे झूठी मुठी अखा बंद करन, और निके निके हाथ जोड़ के अरदास करदे सानू साडे घरां च नजर आउणगे। और सिखदे ने और नकल करदे ने, कॉपी करदे ने कि साडे वड्डे की करदे ने। ते जे प्यो पतत होवे शराब दी बोतल शाम नू पुत दे सामने खोल के ते पुत नू आवाज दे के कहे कि जा रसोई चो गलास लेके आ, ते उम्मीद ते नहीं ना कीती जा सकदी कि उहदा पुत धर्म दे राह ते तुरेगा। जिदां दी सिक्ख्या दित्ती जा रही है उदां दा ही उह सामने वड्डा होके पेश आवेगा साडे। इत्थे बाबा अजय सिंह दा पिता धर्म दे राह ते तुरिया है। पिता दी गोद अंदर बाबा फतेह बाबा अजय सिंह नू चेते रखो शहीद कीता गया। रखशियर ने आख्या बंदा सिंह सिखी सिखी दी अटारा मारदा सा, दस हुण पुत दा कतल तेरे सामने होया। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने वजद विच आके आख्या फरक्शियर मेरा पुत अजय सिंह साहिबजादा बाबा फतेह सिंह दे चरणा विच भेटा चढ़ गया। वो तेरा मन अजे भी नहीं पसीदिया? नहीं। कहिंदे फिर बाबा अजय सिंह पिता दी गोद अंदर ही लेटिया होया, ओदा सीना इथो खंजर दे नाल पाड़ के ओदियां आंदरां दा रुग कढ के बाबा बंदा सिंह बहादुर दे गल पा दिता। फरक्शियर कहिंदा हुण दस, हुण कहेंगा सिक्खी चाहीदी है, हुण डोलेंगा, हुण तेरियां अखां विचों नीर वगेगा, हुण ते पुत दी ए हालत वेख के रोवेंगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर कहिंदा फरक्शियर दो ताकतां मैदाने जंग अंदर लड़ियां, मैं जित गया तू हार गया, चेते रख जेड़े जित जांदे ने उहनां दे गल फुल्लां दे हार पाए जांदे ने, तू फुल्लां दी जगह उते मेरे पुत दीआं आंदरां दा हार मेरे गल पा के मेरी जित ते मोर ला दित्ती है, तू अजे भी नहीं डोलदा। कहिंदे फिर अजय सिंह दा लहू दा लप भर के बाबा बंदा सिंह बहादुर दे चेहरे ते छिड़किया गया। बंदा सिंह ने आख्या फरक्शियर जेड़े जित जांदे ने उहनां उते केसर दे छिड़का कीते जांदे ने, तू मेरे पुत दे लहू दा केसर बना के मेरे ते छिड़क रहा है, और किस मिट्टी दा बने है अजे भी तेरा मन पसीदिया नहीं? जे नहीं पसीदिया फिर कहिंदे ने कि बाबा अजय सिंह दा दिल सीना चीर कढ़ के बाबा बंदा सिंह बहादुर दे मुंह च तुन दिता गया। फरक्शियर कहिंदा हुण दस, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने आख्या जेतुआं दे मुंह मिठे करवाए जांदे ने, तू दुनियावी मिठे दी वरतों नहीं कीती कि तू गुड़ दे नाल शक्कर नाल खंड दे नाल मेरा मुंह मिठा करवावे, दुनिया अंदर इन्हां चीजां नालों भी एक चीज मिठी है, वो है पुत। आम लिखिया पढ़दे आ पुत मिठड़े मेवे रब सब नू देवे, जे पुत मिठा मेवा है ते फरक्शियर ए जान के पुत दा कलेजा पुत दा दिल किन्ना मिठा होवेगा।
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੱਕੋ ਜਰਾ 19 ਜੂਨ 1716 ਕੁਤਬ ਮਨਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ ਕਬਰ ਮਹਿਰੋਲੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੱਜਾ ਡੇਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟਿਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਖੱਬਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਜਮੂਰਾ ਤਪਾਤ ਪਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਦੇਹ ਉਹਦੇ ਤਨ ਨਾਲੋਂ ਬਾਸ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋ ਕੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਇੰਜ ਕੀਤਾ।

जी की फतेह। परम सम्मान योग गुरु की साजी निवाजी गुरु का खास रूप साध संगत जी, धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अपार कृपा मेहर अहमद का सदका सतगुरां दे हजूर सुंदर दीवान सजे हन। सजे दीवाना अंदर आप संगत रबी बाणी का जाप गुरबाणी पाठ बोध सरवण कर रहे हो। सतगुरु जी ने महान तरस किया है 765 अंग तक अज असी पावन बाणी प्रसवी पढ़ी है। 765 अंग तो सतगुरु जी की पावन बाणी का शब्द प्रारंभ हो रहे हैं।

0: जिन कार्ज सब सवारी।
1: हर प्रभ कृपा करे हर जापहो, सुख फल हर जन पावहो। नानक कह सुनो जन पाई, सुख सोह लड़ा हर त्यावहो। सुन हर गुण पीने सहज सुभाए।

सच्चा शब्द सच्ची है सोभा, साचे ही सुख होई। साच रते भगत एक रंगी, दूजा रंग न कोई। नानक जिस का मस्तक

ना जाए गुर कै सहज सुभाए सा तन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल गुर कै शब्द सिगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा जिन आपे आप उपाया नानक सदा फिर रावे अपना जिन गुर चरणी।

0: सहज मिलाया काया सेज गुर शब्द सुखाली ज्ञान तत् कर भोगो अन दिन सुख माने नितर लिया नानक तुर संजोगो सत संतोख कर पाओ कुड़म कुड़माई आया बाल राम जीओ।
1: सत संतोख कर पाओ ऐदा जिथे भाई साहब जी ने विश्राम लाया है पाओ पद ते विश्राम सत संतोख कर पाओ कुड़म कुड़माई आया इथे जमक ला के बल राम जीओ। जिनी वार भी बल राम जीओ पाठ आवे बल तो पहला जमक जरूर लाउणी है।
0: संत

तीन चार मीटिंगां होईयां, उत्थे मैनू बुलाया गया। ते फिर एक दिन मैं दरबार चो बाहर निकलिया ते उत्थे बीबी मिल गई, कहिंदी मैं तुहानू देखना नहीं चाहुंदी, साडा आनंद कारज सी ते तुसी कह दिता सी। मैं कहा बीबी गोली मार, फिर जे मैनू नहीं देखना चाहुंदी ना, जे सच तुहानू कौड़ा लगदा ते फिर मैनू गोली मार। एक बीबी सुखनी साहब का पाठ करी जांदी सी, उन्हें उन्हूं घेर लिया ते दस्या फिर सारा कुछ। बीबिया नूं बीबियां सांभ सकदियां ते बीबियां भैणां नूं मैं अपनियां बीबियां भैणां नूं जां सारिआं नूं मैं बेनती करदा हाँ कि साडा थोड़ा जिहा साथ भी दिया करो, आप भी ध्यान रख्या करो। जदों आनंद कारज हुंदा ना, मस्ती इन्नी चढ़ी हुंदी कि गुरु की बाणी दा गुरु घर दी मर्यादा नूं कोई ध्यान दे विच नहीं रख्या जांदा, केस नहीं ढके हुंदे, फैशन फॉलो किया जाता, गुरु घर की मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। देखो करड़े जे ते सच्चे सुचे बचन ने साडे नाल बीतदी आ रोज, सानू आके सिखाउंदे ने। ए नहीं कि ए महापुरखां दी संगत दे विच रह के रोज करन वाले कार्ज करन वाले रोज कार्ज करन वाले ने, इन्हां कोल असी सिखीए। जिन्हां ने साल दो साल बाद कोई दस पंद्रह साल भी साल बाद अपने घर दे विच व्याह करवाउणा करना बच्चियां दा, वह सानू सिखाउण वास्ते आउंदे ने। खरे जे बचना कौड़े ते लगणगे, पर करिए की। मैं बाणी दी पंक्ति पहला सुना दित्ती कि किस पह खोलो गंठड़ी, दुखी भर आया है, दुख दे नाल बचन कहने पैंदे आ। साडियां बीबियां भैणां साडियां मावां भी साडियां सादा साथ नहीं देंदियां, उत्थे फिर कहिंदियां कोई नहीं साल बाद वीह साल बाद जां इक बच्चा सी इन्हां दा, इस करके इन्हां नूं चाह आ। चाह पूरे करद्या करद्या गुरु दे पासों किते बेमुख ना हो जाइए। गुरु दियां खुशियां लैण वास्ते आउंदे असी गुरु दे गुरु घर दे विच, खुशी दे समागम दे विच आनंद आनंद खुशी नूं कहिंदे ने, ते खुशी दे आनंद कारज समागम दे विच आउंदे आ गुरु कीआं खुशियां लैण वास्ते, पर गुरु की बेअदबी करके जांदे ने। किवें? बीबियां दी चुन्नी सिर दे उत्ते टिकदी नहीं आ। इधर बंदियां ने जिन्हां ने पग्गां बन्नियां हुंदियां उन्हां ने तां सिर टके ही हुंदे, जिन्हां दे केस कटे होए ने उन्हां ने भी वीरां ने रुमाल बन्ने हुंदे, सिर चंगी तरां टके हुंदे ने। पर बीबियां ने चुन्ना तां लिया हुंदा पर उह चुन्ना सिर दे उत्ते आउंदा ही नहीं आ। ये खरे दे बचन सिद्धे जटके बचन कहे आ मैं। इस करके साडियां बीबियां भैणां नूं जिहड़ियां बाणी पढ़दियां गुरु के सिख दे घरां दे सिखां दे घरां दे विच जमीआं होईआं, उहनां नूं बेनती है कि वह थोड़ा जिहा साथ दे दिया करो। ये ना क्या करो कि बाबा जी कोई नहीं जिवें करदे करन दो, नहीं नहीं। फिर उस समय भी जर लिओ जदों परमात्मा की दरगाह दे विच जिवें उहने कीता फिर कोई चीकां ना मारे। गुरु की बेअदबी करके ते सुख सानू नहीं प्राप्त हो सकता। इस करके खरे दे बचना ये दुख दे विचों निकले हुए बचना, इस करके गुरु के सिखो सारिआं नूं ध्यान रखना पैणा है। पहले समय की जे इन्नी मर्यादा चेंज हो गई है, इन्नियां आदतां साडियां सही हो गईआं ते जिहड़ियां थोड़ियां जिहियां रह गईआं ये साडा साथ दिओगे ना ते फिर सब कुछ सही हो जाना। जे साथ दोगे तो ये

निर्मल नहाए निर्मल जल नहाए मैल गवाए भये पवित्र शरीरा दुर्मत मैल गई ब्रह्म भागा हौ मैं बिनठी पीरा नदर प्रभु सत संगत पाई निज कर होवा वासा हर मंगल रस रसन रसाए नानक नाम प्रगासा अंतर रतन बिचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन घर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिंगार बनाए हर प्रभ साचे पाया जो प्रभ कहे सोई पर कीजै नानक अंक समाया हर प्रभ काज रचाया गुरमुख वी आहन आया वी आहन आया गुरमुख हर पाया सा तन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जियो आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपू

तर चतुराई थाए न पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावे चोटा खावे अंत गया पछताया बिन नावे को बेली नाही पुत कुटंब सुत पाई नानक माया मोह पसारा आगे साथ ना जाई।

अनहत शब्द सुहावा सच मंगल हर जस गावा गुण गाय हर हर दुख नासे रहास उपजै मन घना मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख पणा होए रेण साधु।

ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरु प्रसाद। मनुख दी सिरजना विच परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी पूरी सियाणप पूरी बख्शिश तो कम लिया। मनुख दा एक एक अंग बड़ा कीमती है, एक एक नस, एक एक रोम और एक एक इंद्रिय दी अपनी खास महानता। लेकिन इहदे चों शरीर दी इस बनतर दे चों चार हिस्से ऐसे ने जिन्हां दी व्याख्या भारत दे ऋषि मुनिया ने बड़े सोहणे ढंग नाल कीती है। प्रथम सिर, दूसरा बावां, तीसरा पेट और चौथा चरण पैर। सिर दी अपनी महानता है, हत्थां दी अपनी गल है, पेट दी अपनी दुनिया है,

ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूने सैभं गुरुप्रसाद। परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी प्रकृति दे जीवन विच एक अटल नियम रखे है, हर जीवन नो तीन पड़ावां दे चों लंघना पैंदा है, चाहे वो पत्थरां दा जीवन है,

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। ऐथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ।

पौड़े बिन सतगुरु के ना पायो, बिन सतगुरु के ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की दिशन तो खी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझ ने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिल गए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया।

0: पहला पहला पर गड्डी लदी है पर भरिए साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डिए खास पढ़िए है जेते बरस बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेके एक गल और हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: तुवा पूरा तपे का सत गिर तुवा हो कलजुग रथगन का पूरा गैर तुवा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर समी सच में अच्छा सच रहे।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आखे पाए हुए प्राणा सटिए भी फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत दर के अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पल के थुक पवे निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न की बे तग आया पे बते।

ओडिशा महोदया कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म लाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

नानक कूड़ रहया प्रभो। मथे टिका तेड़ धोती का खाई, हाथ छुरी जगत कसाई, नील वस्त्र पैर होवे।

नहात फिर लिये सात समुन्दरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बखियार सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहूं सुन लिहो सब

श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

असिख संगरो दुष्ट जिते उठवतो तपाता सकल मलेच करो रण कहता। जे अस तुज तब सर नहीं परे तिनके दुष्ट दुखत हुआ मरे पुरुख जावन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सौ टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट न है रचा होय ताय सब काला दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो ताके ताव तन कम हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हो।

मोहो हसाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सबराता केल बेग सकल देह को हरता दुष्ट दोख

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

अरे चेत चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाही तेती।

हटा देता है गणेश। धर्म निरपेक्ष का मतलब है देवी देवतावां नूं महापुरुषां नूं गुरु पीर पैगंबरां नूं इस देश चों कढ़ो एक पासे सुट्टो। हालांकि यही देश पूर्ण तौर से धार्मिक होण दा दावा कर सकदा है और इसी देश ने ब्रह्म ज्ञानी पैदा किए ने, अवतार पैदा किए ने, संत पैदा किए ने, दिव्य ज्योतियां देवते पैदा किए। पर ठीक किया जाए कुछ अरसे तो मूर्खां दे हाथ विच देश आया है, बिल्कुल मूड़ां दे हाथ विच, कहण विच मैनूं कोई संकोच नहीं। ठीक है किसी वक्त छोटे छोटे इलाके दे राजे सन, श्री राम श्री कृष्ण जनक महाराजा रणजीत सिंह धार्मिक सन, देश की फिजा धार्मिक बनी हुई सी, किधरे हरिश्चंद्र सी किधरे जनक सी, राम भी राजा सन अयोध्या दे, श्री कृष्ण भी राजा सन द्वारका दे, महाराजा रणजीत सिंह भी राजा सन पंजाब दे, वो गुरमुख पहले सन गुरसिख पहले सन राजाबाद दे सन। कोई भी चीज कीमती घर विच आए महाराजा साहब नूं रणजीत सिंह नूं गुरु चेते आ जांदा है। कहिंदे ने निजाम हैदराबाद कुछ मुश्किल विच पिया, उन्हें महाराजा रणजीत सिंह तो मदद मंगी फौज दी, आखिया घट तो घट 1000 खालसा मैनूं चाहिदा है, मेरी रियासत इच बगावत है, मैं तो काबू नहीं हो रही। महाराजा साहब ने उस जमाने 1000 खालसे लाहौर को भेजे, जिन्होंने अज असी दक्कनी सिंह कहने हैं, महाराष्ट्र दे जो रहिंदे ने, तमिलनाडु दे जो रहिंदे ने, आंध्रा दे जो रहिंदे ने, ये कोई ने जो महाराजा साहब ने भेजे सन। अज उन्होंने बहुत वड्डी तादाद है, पर उत्थे ही उन्होंने शादियां दे सिलसिले चलाए तो मिक्स जिया फैमिली हो गई है, उन्होंने रंग रूप भी उन्हां दा आंध्रा तमिल या महाराष्ट्र जैसा हो गया, लेकिन सिखी का जज्बा बड़ा प्रबल है दक्कनी सिंघां विच। इंज कह लो सिखी की सही तस्वीर उन्हां कोल मौजूद है, सिखी प्यार भी मौजूद है, सिखी जज्बा भी मौजूद है। जद निजाम हैदराबाद उसने देखा इन्हां 1000 खालसियां ने अमन बहाल कर देता है और खुशी वजह महाराजा रणजीत सिंह के जन्मदिन पे निजाम हैदराबाद ने एक बड़ी खूबसूरत चांदनी भेजी, चंदोआ भेजे, जिस दिन लाहौर विच एक तकरीब मनाई जा रही थी महाराजा साहब दी, चाननी बन दी गई सिंघासन थे। महाराजा साहब सभा दे चाहे निगाह चली गई चंदोए थे, चाननी थे, बड़ी खूबसूरत हीरे जड़त मोती जड़त नीलम दे छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए जरी दा कम। दास ने कई दफा इस चाननी के दर्शन किए ने तोशे खाने, क्योंकि दास एक महीना हर साल हाजरी दरबार साहब भरता है गुरु रामदास जी महाराज के गुरपुरब को लेकर दिवाली तक। किसी भगत सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह साहब का हेड ग्रंथी श्री दरबार साहब, उन्होंने दरबार साहब मेरे को प्रण ले लिया ए महीना तुसी किधरे भी नहीं जाना, चाहे कुछ भी होवे या किधरे भी होवो, थोड़ी सेहत ठीक होगी, थोड़ा शरीर है वो तुसी गुरु रामदास के दर से हाजरी भरनी है, तो मैं हाजरी भर रहे हैं। शौक नाल मैं इस चाननी दे बाकी साजो समान दे साल दे साल में दर्शन करदा सी, उचेचा तोशा खाना खुलवा के, बदकिस्मत ये सन 84 दे जल के खाक हो गई नहीं रही। ये चाननी जिस वक्त सिंघासन दे उपर बनी गई महाराजा साहब देखदे ने देखदे ही रह गए। उस दिन एहलकारां दा ये चाननी ये चंदोआ ये कदों बनाया है, अहलकार कहंदे ने महाराजा साहब बनाया नहीं है सी, ये ते निजाम हैदराबाद ने आपनों भेट भेजी है, ते सब तो कीमती ते खूबसूरत जान के असी बन दित्ती है। खड़े ने थोड़ा जिहा सोची पै गए ते फिर कहन लगे उतारो इसनों उतारो। जिन्हां अहलकारां ने चाननी

ही है, दोनों ही है। इस दोनों नो दोनों ही सकते, इसनों कबीर कहने ने उल्टी गंगा जमन मिला। एक गंगा जिथों जन्मी है, जमन जमी है, पैदा हुई है गंगोत्री, गंगा नो उल्टा के जिथों जन्मी है उथे मिला है, उथे ले जा। धुन कितों उठी है, धुनी नाभी तो धर्म की साधना कहती है। उन्हें जबान दे राही जो धुन प्रगट हो वाहे गुरु, इनू वापस ले जा, तुम्हें वापस ले जा। इसे आखण औखा साचा बड़ा बड़ा वाहेगुरु वाहेगुरु आखना की है। सौ दफा कह रहा, 500 दफा कह रहा, कहते हूं एक दफा ये वाहेगुरु रसना आखे, इनू पलटा के उठे ले जाई जिथों उत्पन्न हो, जिथों धुन उठी, दोनों नो धोनी तक ले जाए। दोनों उठी नाभि तो धोनी तो, पर आई हृदय तक पसंती, फिर पहुंची कंठ तक मदमा, फिर जबान ने बयान कर देती बैखरी। हूं बैखरी नो मदमा बनाना है, मदमा नो पसंती बनाना है, ते पसंती नो फिर पराना। उल्टी गंगा जमन मिला, किस तरह हो गए? अमृत वेले बैठ के कभी ध्यान साधना करोगे तो पता चलेगा। इसे गुरु नानक ने कहा आखण औखा साचा कठिन, सारा दिन राम राम राम करी जा रहे। राम की धुन जिथों उठी उथों वापस ले जा, वापस ले जाने की अंदर क्रांति होगी। यकीन जानो एक दफा का वाहेगुरु आखना जन्मां जन्मांतरां का थकेवा ला देंदा है, ते जन्मां जन्मांतरां दे पाप धो देंदा है, दुख मिटा देंदा है। पर एक दफा वाहेगुरु आखण वास्ते कई दफा करोड़ां दफा आखना पैंदा है, साधना करनी पैंदी है। उस तो बंदा थकदा, उसे तो थकदा, पर जन्मां जन्मांतरां का थकेवा लै जांदा है एक दफा। जबान वाहेगुरु जो हुण कह रही है उठी ते धुन ए परा नाभी ते, इन्हों वापस लै जाना है। किवें लै जाइए? जबान दे राही ते धुन बार प्रगट होई है, जबान वापस नहीं लै जा सकदी, इन्हों कन्ना दे राही वापस। इस वास्ते धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहने रे मन राम सेवों कर प्रीत किवें करिए। तो महाराज कहने सरवन गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत, जबान नाल गाई जाओ वाहेगुरु वाहेगुरु, कन्ना नाल सुनी जाओ। सरवन गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत, गाया होया हवा च ना उठ जाए, वाहेगुरु वाहेगुरु आख्या होया सिर्फ फिजा विच नहीं, ये तेरे अंदर जाना चाहिए, बिना कन्ना तो अंदर नहीं जा सकता। शब्द के कन्ना दे राही अंदर जाए, भजन कन्ना दे राही अंदर जाएगा, भोजन मुंह दे राही अंदर जाए, भोजन मुंह दे राही अंदर जाके आखिरी हिस्सा जो बनेगा खून भजन, अंदर जो जाएगा। और वाकई बंद भजन अंदर चला गया, भजन भी छकना ही है कन्ना दे राही। जेको खावे जेको वंचे इसका होयो उदार, कोई खावे ते हजम करे पचाए उदार हो जाएगा। ओ जपे होया नाम जो कन्ना दे राही सुनिया गया अंदर गया, यही महारस बनेगा, महा आनंद महा प्रकाश महा शक्ति, यही समाधि भी निकल गए। जैसे धुन नाभि तो उठी परा, हृदय तक पहुंची पसंती, कंठ तक आई मदमा, जबान ने बयान कर दी थी बैठ, वापस भी उन्हें पड़ावा तो जाएगी, लेकिन द्वार अलग है, द्वार कन है। धुन बार प्रगट हुई थी रसना दे रही, ये धुन अंदर जाएगी कन्ना दे।
सारी जिंदगी का भी वाहेगुरु वाहेगुरु आख्या व्यर्थ जा सकता अगर सुने एक सैकंड का भी आख्या होया वाहेगुरु जन्मां जन्मांतरां दे दुख मिटा देगा अगर सुने इन्नी मैं लखमड़िया घर इकट्ठे एक रती ले लखां मन लकड़ां जिवें चिनगारी नाल भस्म हो जांदियां ने इको दफा दे वाहेगुरु आखदे आ करोड़ां जन्मां दे पाप दुख संताप मिट जांदे नानक भगतां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश जवान ये जो वाहेगुरु वाहेगुरु कह रही है वेख रही कि पहले मदमा सी कंठ दे सी ये उस तो पहले पसंती सी हृदय सी ये उस तो पहले नाभी दे सी पर पसंती मदमा बैखरी बैखरी नु मदमा बनाना है मदमा नु पसंती बनाना है पसंती नु फिर परा बनाना है फिर अंदर जावे तो कन्ना दे राही जाएगी और ताई जा सकेगी जे ध्यान दी कागरता है मन दा ठहराव है मन सो वरना नहीं जाए वाहेगुरु वाहेगुरु जबान उच्चारण कर रही है और मन सुन रहे कन्ना दे रहे तो पहले धुन कंठ तक आएगी मधमा जैसे वाहेगुरु मधमा बने हैं ऐसे मनुख नु वाहेगुरु आखण दा रस बाणी जपण दा रस साधना दी दुनिया इन्हां लोकां दी तादाद ज्यादा जिन्हां नु रस आण लग पे अगर मदमा तो हुन वापस कंठ तक चली ध्यान दी कागरता बनी रहे ते जप चलदा रहे।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: गुरबाणी शब्द कथा कीर्तन सुनन वास्ते सुनदे रहो रेडियो 1550 AM। भाई साहब संत सिंह जी मस्कीन, भाई पिंदरपाल सिंह जी, भाई ठाकर सिंह जी अते होर पंथक गुणी ज्ञानियां तों कथावां ते गुरसाखियां ते गुरबाणी सुनन दे लई सुनिया करो 1550 AM। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उगर सैन खोराज अभय भगतें जन दियो।

राज अब चले अटल आद पुरख फुरमायो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर आई भट्टां दी बाणी और उस दा एक पावन पवित्र सोईया है। साडे देश दे धार्मिक ऋषि मुनिया ने युगां दी बकायदा वंड कीती है और कहिंदे ने चार युग ने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। इंज कह लईए कि चार कलासा ने या कह लईए कि चार स्कूल ने। प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, बच्चा है, थोड़ा जिया प्रौढ़ होया है, जवान होया है, अधकड़ होया है और बुजुर्ग हो गया है, बुढ़ा हो गया। तो बच्चे लई होर स्कूल है, वड्डे लई होर स्कूल है, नौजवान लई होर स्कूल है। जैसे

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musa baby, yeah,
2: Mercy.

सौ साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे, मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत लीजिए।

0: रामचंद्री राज के अंदर धन गुरु नानक देव जी महाराज की बड़ी कीमती पंक्ति है, पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। धन गुरु नानक देव जी महाराज इतों कहीं जागता है कि आप जिथे एक महान आत्म ज्ञानी ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, गुरुदेव ने, वसत के अवतारी पुरुष ने, उसे उस शरीर शास्त्री जी ने, अतिन ने पुरख में नाव, नाव में पुरखा, कौन विधे विध जाने। विधाते दी इस विधि नू कौन जानता है कि जो पुरख का शरीर है उसके अंदर नारी दे कण भी है, और जो नारी का शरीर है उसके अंदर पुरुष के कण भी है। कोई भी जो शरीर है मां बाप तो आया है, तो उसके अंदर मां भी अंश भी है, पिता भी अंश भी है, पुरुष के कण भी हैं और नारी के कण भी हैं। कहते हैं पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके है कि उसके अंदर पुरुष के कण से पूरे ने, नारी अधूरी है, अर्ध हम, और नारी स्त्री मैं इस वास्ते स्त्री हो सकी है कि उसके अंदर नारी के कण से पूरे ने, पुरुष अधूरा है, अर्ध हम। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस गल के तस्लीम किया कि बाहर की यह नारी पुरुष के अंदर दे हर अंग नूं संपूर्ण करती है, पर पुरुष का अहंकार प्रबल सी, उसने यह गल अंदरों से तस्लीम की, बाहरों आखण दे संकोच किया कि पुरुष भी अर्ध अंग है, क्योंकि पुरुष के अंदर नारी अधूरी है, नारी के अंदर पुरुष अधूरा है, पुरुष करके नारी अर्ध अंग है, और नारी करके पुरुष अर्ध अंग है, अर्ध अंग अधूरा अंग। तो ये दो अंग मिलके संपूर्ण हो, ये अर्ध अंग बाल की कशिश पैदा कर गया है, पुरुष के अंदर नारी की कशिश, नारी के अंदर पुरुष की कशिश। गुरु नानक देव जी महाराज का कहना कि वो जो अर्ध अंग है वो संपूर्ण होना चाहिए। इस अर्ध अंग की जी संपूर्णता है, ये पशुओं की तरह ना हो, मनुख आखिर मनुख है, ये कोई सोचनी है, ये कोई विचार ने, तो इस समाजिक रस्म नूं धर्म के दायरे में चलाने की आग्या हो, ताकि रिश्तों में पुख्तगी हो, रिश्तों में पक्याई हो, रिश्ते अटूट होवन, और जिस रिश्ते के विचोले आप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बन जाओ, मोर गुरबाणी भी लगे, और इसे तरीके प्राचीन ऋषि मुनि धर्म की मोर ला के इस अर्ग अंग की संपूर्णता करते सन, तो इसका नाम उन्होंने रखा कि विवाह। गुरमत यह नाम रखा गया है आनंद कार, खुशी का एक कम, क्योंकि अर्ग अंग संपूर्ण हो रहा है। ऐसी जेरी मर्यादा बनाइए परिपूर्ण परमात्मा ने हाथ बनाई, ईश्वर भी एक होंदा होया अनेक है, उसने मनुख नूं भी अनेक हिस्सों में वंडिया। जैसे कलगीधर पिता कहते ने अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। हे प्रभु तू एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। उसने खास करके पुरुष नूं भी ते नारी नूं भी अनेकता विच वंड दिता है। जो पुरुष किसी का बच्चा है, लड़का है, वो किसी का भरा भी है, और किसी का फिर पति बनता है, किसी का पिता है, किसी का दोस्त है, किसी का पड़ोसी है। एक पुरुष कितने रूप रखता है, एक भरा भी है, एक पति भी है, ये पुत्र भी है, ये पड़ोसी भी है, ये दोस्त भी है। इस तरह स्त्री भी एक होंदे होया अनेक है। जे किसी की बच्ची है, किसी की धी है, तो किसी की बहन भी है, किसी की बहन तो किसी की सहेली भी है, किसी की पड़ोसन भी है, और फिर किसी की पत्नी। सारे रिश्तों में पकियाई होवे, पवित्रता होवे, इस वास्ते विचोला चाहिदा सी। तो विचोला गुरु गुरु मोर लांदा है कि मनुख पुरुष भरा बने ते चंगा बने, लोकी मान करन के भरा होवे ते ऐसा होवे, ते पति बने ते आदर्शवादी और एक वाकई नमूना बने, और ये पुत्र बने ते ऐसा के मां बाप फकर करन, ते दोस्त बने ते ऐसा के दोस्त उससे मान करन, और ये पति बने ते ऐसा कि पत्नी का मान सम्मान ते इज्जत आबरू बने, उसकी खुशी बने। हू बहु इसे तरीके नाल इतनी जिम्मेवारियां ने बच्ची दी, ते बच्ची ऐसी बने कि मां बाप के हिरदे हमेशा याद करते रहन, ते साडे घर का बिछड़िया होया फुल सी पहले महक वंडी पेके घर दे, हुण महक वंड रही है सौरे घर, और मां बाप की खुशी बनी रहे, महक फैल रही है, खुशबू फैल रही है। ते पत्नी बने आदर्शवादी, ते भैन बने महान, बड़ा मान कर भैना मान कर। सारे रिश्तों में पख्याई से पुख्तगी लाजमी है, ते पत्नी होवे ते ऐसी कि सारिया ही खुशियों का सोमा बन जाए पति और पति मान कर। तो इससे लाजमी है कि रिश्ते महानता आवे, किसी महान नाल संबंध जोड़े, और इन्हों दो आत्माओं के संगम, इन्हों दो शरीर के संगम में कोई मदद चाहिए है। जैसे परिपूर्ण परमात्मा की दुनिया की असं देखते हैं, दोहां जोड़ने तीसरा चाहिए, दो कागज जोड़ने ने गोंद चाहिए, दो कपड़िया जोड़ना है, कोई धागा चाहिए, कविता जोड़ना है, तो बकायदा गारा सीमेंट इत्यादि चाहिए, दो लकड़ा नु जोड़ना है, त्रे किल कुछ ना कुछ है चाहिए, दो दिलों नु जोड़ना है, इतने दो दिल जोड़ने, दो विचार जोड़ना, दो ख्याल जोड़ना, तो थोड़ी से चाहिए है। बस ये गुरु तीजा है जो दोहां नु इक करदा है, दोहां ते मोर लांदा है। ते हुण मैं दो मिनट आपके होर लवां ते समाप्ति करा। रिश्ते दुनिया दे दो तरह के हैं, खून दे रिश्ते, ख्यालां दे रिश्ते, विचारां दे रिश्ते, मन दा रिश्ता। जिहड़े खून दे रिश्ते ने, इन्हां दीआं प्रणालियां तिन ने, नानके दादके सौरे। बे खून दा रिश्ता दादकियां नानकियां ते फिर सौरियां, पर नानके दादके ते सौरियां दे रिश्तियां नूं जिथों जन्म मिलदा है पति पत्नी तो, ये रिश्ता खून दा रिश्ता नहीं है। बच्ची किसे घर दी, बच्चा किसे घर दा खून देख नहीं है, किस तरह किया जा सकता खून है, ये खून एक नहीं है। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने भी नहीं मने, सतगुरु की बाणी कहती है ये दिलां दी सांझ है, विचारां दी सांझ, एक जो दोए मूर्ति धन फिर कही है सोच। महाराज कहने ने असि पति पत्नी उसनों कहने हा, विचार एक हो गए ने मूर्तियां दो, ख्याल एक हो गए ने मूर्तियां दो ने, पर इतनी गल स्पष्ट है जिथे विचारां दी सांझ हो जाए प्यार का जन्म उथे ही, वरना नहीं। जिथे विचारां दी सांझ हो जाए प्यार उथे पैदा होंदा है, और जिथे प्यार है उत्ते एतबार भी आंदा है, एतबार भी मनुख का उत्ते नहीं जाता, और जिथे एतबार है कहिंदे ने सदाचार का वास्ता भी उत्ते ही है, और जिथे सदाचार है करतार दीआं सारीआं बख्शिशां भी उत्ते, करतार दीआं सारीआं नियामतां भी उत्ते ने। आप सारे सियाणे बैठे हो, बच्ची बच्चे भी ए भी दोणे सियाणे ने, ये रिश्ता विचारां दी सांझ दा है, ख्यालां दी सांझ दा है। एक जोत दोए मूर्ति, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਾਦਕੇ ਨਾ ਨਾਨਕੇ ਨਾ ਸੋ। ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕੇ ਸੋਹਰੇ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੋਗ ਦੋਹਰੇ ਮੋੜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਪੀਆਂ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜੁੜਿਆ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਨ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਪੀਏ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਜੋਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ, ਜੋਤ ਕੀ ਮਨ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ। ਤੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਣ ਤੀਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹਿ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਲੈਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਨ, ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਯੋਗ ਕਰਨ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਗੜਾਂਗੇ, ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸਮ ਆਰਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮਹਾਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰੋ 1550 AM ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ।
2: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.
3: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਚੈਰੀਜ਼ 2.99 ਪਾਉਂਡ, 4 ਕਿਲੋ ਰਾਜਨ ਹਿਡਨ ਮੈਂਗੋਜ 16.99 ਦਾ ਬਾਕਸ ਅਤੇ 10 ਪਾਉਂਡ ਸਨੋ ਬੋਏ ਰਸਟ ਪਟੇਰੋਜ 3.49 ਦਾ ਬੈਗ।
4: Family Care Pharmacy
5: ਪੂਰੇ BC ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਚ ਨੰਬਰ 1।
4: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਹਰਬਲਸ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
5: ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਟਾਕਿੰਗਸ, ਆਰਥੋਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4: ਹੁਣ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਏਡ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
5: ਫ੍ਰੀ ਪਲਿਸਟਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੇਮਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
6: 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ।

चुन चुन सतर हमारे मारिया है। आप हाथ दया मजा उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया, हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तो जो करिया और अच्छा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे,